家属把姜文也喊的听个能说没忘卡就姜文说路是一慢的一铺你也去我就讲卡不拉萨你说把不一忘弄坏就讲有时候是有给买不我一拿我一拿就讲有什么过来买牛我三万那就我三那买牛我三万没那就家的人就我是就我给我就家属把姜文一听个我很难用我穿的呀你还是姜文他搞一样他我在我穿的呀那给你们帮我送看那不如是回西亚库丢到外面看一看我是到我还是有讲有个车路是把给你我还是有那一天我说家属把我来一问还是有爱说把关系把那样的不要不一带是那我还能用讲有个把姜文一进门吧我来说我那有那就前面他家去过过的吧我不能在前面他家一干他是一万卡过过的吧背了背了一门看一块啥当自己干他是一套我穿的呀不得你听给你我穿的呀家属吧那谁过的问题呀是有家属吧因为是有你为的有我是有的你यू यू वही नहीं पा चासु भाई था ना न्यू की भाई चादर सुलो क्या वही तुम दिओ गानू आज यू चाच कुत कुत पा पहला गए ऊपर ना न्यू चान्यू क्वेश लोची गए लोजो मैच पिस्ता जो कहना कुत चासु भाई जो वही एवो एवो चासु भाई न्यू ना कहाँ से जिम्मेदार वो चचा कोई जा नहीं हूँ ना नहीं हूँ चाइयो चाय कुत कुते कुछ कुत कुते वाह कि मैं पहला गोईम खाते जा सुबह इकानस चाइयो केम्बा सादा कभी कुत जा सुबह चाहे उन कहाँ जो चाइयो एवो मैं गुदियो वचुंदे या तुम दियो कि मैं बिया सुना हुआ है से कि मैं था माइनो जमाई पिस्ता चिताई तुम जिने पिस्ता चिताई चासु बजामाई तुम नहीं जिम बिया ना हुआ है जो चाइयो वाला सुए ना हुआ है ना से अजो चाचे के एवन एव थैन कह मैं गुदियो चाच कुत को दे बापे लाई पंखा नहीं हो चाचे मैं थैन कह मैं गुदियो कि मैं भी यू या यू ना हुआ है ना इसे कि मैं था वो मायनो सेनातुं जापी न मायनो चावाई कि मैं भी चार सुबह चुट को भी यू बंद ना न्यू चार चांस बस चावाई वाला चंचल ना हुआ है बंद आज यू तो मैं जो एक मायनो या मक्पी ना चाहूँ थे मैं कुछ यू चार सुबह वाला एक मायनो ना हुआ है कुछ सच बस वो ही सो ना हुआ जो चार सुबह जब मैं कुछ पका ही हूँ ना मायनो जब मैं ये तो ऐसे यो तो जो मैं गुट लेट को दे इमान ची जब मैं यूस ना हुआ जाए तो चुन्दे आता हुआ काफी इप को दे चार मैं शो नहीं वाली ना इप सेक वो इम्हें गिन्दे ना ना सावे शी नहीं वो चुन्दे चार अच्छा हुआ था वो मैं शुगर खा खान दिया हिं शाब चार सुबह जब मैं इमान था वो यूस ना हुआ जो जब जब मैं इक्वल आया हूँ मैं ना जो ना ले चुको जाता हूँ जिको दियो ना पे कि मैं था उच्च कुत को दे जो चाऊ ना से कि ये का उसकी तो नो हुआ ए वो उसकी नो हुआ जो जाते हैं मैं इको दियो वाला जा सो ना वो है ना कि इन बाजार इस बाजार में इक्वल जो कुछ बाजार में ये एक वर्ष पना इन ते कहियो ना जो आज यो यो वो गए नाम ना सब जाओ ये कुछ पा कहियो ना वो ना जो हाँ तो बजाऊँ वैसे ना उस पर ना गुनाह ऐंते नहीं हो कुछ बजाऊँ ये ना ऐंते जुए चुंदे ऐसे कोई युवराम ये तुम दाना नहीं हो जासू बजाऊँ ये आई सुबह शेन ना स्कैम ना खाती हो कुछ मायनो जाऊँ ये तो कुछ उपर ना गुनाह कुछ बजाऊँ ये ना ऐंते कहियो हाँ तो रामुस पर ना गुनाह तेरे सुस्ती को बा उनसे अच्छा ही कुछ बजाऊँ ये हाँ तो पुयुआ उन्हों